ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला कमानों से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने ईरान पर कई शक्तिशाली हमले किए हैं। उसका कहना है कि ये हमले हॉर्मूज जलडमरू मध्य में 3 कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक में कई विस्फोटों की खबर दी। उसका कहना है कि केशन द्वीप पर भी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के विपरीत है। NHK से बात करते हुए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि यह समझौता ज्ञापन पूरी तरह से ईरान के रवैये पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जलडमरू मध्य में ईरान की हरकतें अस्वीकार्य हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि समझौता ज्ञापन का उल्लंघन अमरीका कर रहा है। विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी का कहना है कि हमले और लाइसेंस रद्द करना समझौते के खिलाफ हैं। उन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। नाटो के नेता 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। बैठक से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने नेताओं का स्वागत किया और पहले दिन राजधानी अंकारा में प्रीति भोज का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में नाटो सहयोगी अमेरिका का समर्थन करने में विफल रहे हैं। उक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उक्रेन और रूस समझौता करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बैठक से इतर आयोजित एक रक्षा मंच को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक ये संघर्ष जारी है, कृपया हमें और अधिक वायु रक्षा मिसाइलें हासिल करने में मदद करें। इस समय यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बाकी सब हम स्वयं।

प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को भी प्रभावशाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रणालियों की आवश्यकता है। तुर्की के अंकारा में मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में जापान सरकार ने नाटो और उसके चार हिंद प्रशांत साझेदारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। इस बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रुते, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मंत्री, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रुते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई। मोतेगी ने कहा कि यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्रों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, जैसा कि यूक्रेन में रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग से स्पष्ट होता है। कोइजुमी ने यह भी कहा कि अब कोई देश अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता और नाटो के साथ सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों ने रक्षा उद्योग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नाटो और चार साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पश्चिमी जापान के नारा शहर में बुधवार को कई लोगों ने उस स्थल पर फूल अर्पित किए जहां 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो की चुनावी भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना 8 जुलाई 2022 को यामातो साइदाइजी स्टेशन के पास हुई थी। क्योतो शहर से आए करीब 60 साल के एक व्यक्ति ने स्मारक वेदी पर नमन किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे नेता थे और उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री से देश की रक्षा करने की प्रार्थना की। क्योतो के ही रहने वाले करीब 20 साल के एक युवक ने कहा कि 4 साल बहुत जल्दी बीत गए। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को पता चले कि एक राजनेता हिंसा के शिकार हुए थे। नारा क्षेत्रीय न्यायालय ने जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में 45 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस मुकदमे में सजा की गंभीरता और यामागामी के पालन पोषण को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसकी मां द्वारा यूनिफिकेशन चर्च नामक एक धार्मिक समूह को दी गई भारी दान राशि के कारण उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। अनुमान है कि दूसरे मुकदमे में भी ये एक अहम मुद्दा बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के निकट शुक्रवार से शनिवार के बीच एक विशाल और भीषण तूफान आने की आशंका है। इसे देखते हुए जापान के मौसम अधिकारियों ने वहां के लोगों से तैयारी करने का आग्रह किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि बुधवार सुबह 6 बजे तक समुद्री तूफान बावी फिलीपींस के पूर्व में समुद्र के ऊपर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था। आशंका है कि तूफान अपनी ताकत बरकरार रखते हुए ओकिनावा के साकीशिमा द्वीप समूह के करीब पहुंचेगा। शुक्रवार को साकीशिमा द्वीप समूह पर हवा के अंधड़ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। इतनी तेज आंधी मकान गिरा सकती है। इस क्षेत्र में ऊंची लहरें और समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ चेतावनी स्तर की भारी वर्षा और तूफानी लहरें भी देखने को मिल सकती हैं। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल चालित ट्रकों द्वारा लंबी दूरी तय करने से जुड़े परीक्षण की घोषणा की है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब लॉजिस्टिक्स कंपनियां पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में इस ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रक निर्माता इसुजू मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम डेवलपर T2 और ऊर्जा कंपनी इदेमित्सु कोसान इस परियोजना में शामिल हैं। परीक्षण इस वर्ष गर्मियों में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के बीच 500 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शुरू होंगे। कंपनियां ये पता लगाना चाहती हैं कि हल्के तेल की तुलना में बायोडीजल ट्रकों की

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
1: माफ कीजिए,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: टेबुक्रो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देसु,
0: 1900 येन के।
1: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्ड वा त्सुकाएमासु का,
1: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्सुकाएमासु,
0: जी कर सकते हैं।
1: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
0: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
4: टेबुक्रो
1: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशीन देसु गा
1: का मतलब है चाहिए।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
0: और उसके बाद कहें
4: होशीन देसु गा, होशीन देसु गा।
1: बना है ई विशेषण
4: होशी
1: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
1: जोड़कर
4: देसु गा
1: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ तेबुक्रो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसु गा, इसलिए वाक्य बना तेबुक्रो गा होशीन देसु गा, यानी दस्ताने चाहिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देसु गा, टेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
5: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。 このお菓子はいかがですか?
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने पूछा,
5: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
1: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।

0: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
1: ओमियागे
0: का अर्थ है उपहार।
2: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
3: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
2: इसमें
1: そうですね
2: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
1: このお菓子
2: का मतलब है ये मिठाई और
1: いかがですか
2: का अर्थ है कैसी रहेगी।
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: お土産が欲しいんですが、北海道のお土産が欲しいんですが、あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが、
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
1: फुरोशिकी
2: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
4: अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
0: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
1: कासा।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: अनो सुमिमासेन, कासा गा होशी इन देसु गा।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: कार्ड वा त्स्काएमास का?
1: कार्ड वा त्स्काएमास का?
0: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: इसमें
1: कार्ड
2: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
1: क्रेडिट कार्ड।
2: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
1: कोनो कार्ड वा त्स्काएमास का,
2: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: कार्ड वा त्स्काएमासु का?
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: अनो सुमिमासेन, तेबुकुरो गा होशी इन देसु गा।
5: तेबुकुरो वा कोचिरा देसु।
4: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
4: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
0: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
2: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
0: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
2: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
0: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आप

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खबानों से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने ईरान पर कई शक्तिशाली हमले किए हैं। उसका कहना है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक में कई विस्फोटों की खबर दी। उसका कहना है कि केशन द्वीप पर भी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के विपरीत है। NHK से बात करते हुए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि यह समझौता ज्ञापन पूरी तरह से ईरान के रवैये पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जलडमरू मध्य में ईरान की हरकतें अस्वीकार्य हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि समझौता ज्ञापन का उल्लंघन अमरीका कर रहा है। विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी का कहना है कि हमले और लाइसेंस रद्द करना समझौते के खिलाफ हैं। उन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। नाटो के नेता 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। बैठक से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने नेताओं का स्वागत किया और पहले दिन राजधानी अंकारा में प्रीति भोज का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में नाटो सहयोगी अमरीका का समर्थन करने में विफल रहे हैं। उक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उक्रेन और रूस समझौता करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बैठक से इतर आयोजित एक रक्षा मंच को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक ये संघर्ष जारी है, कृपया हमें और अधिक वायु रक्षा मिसाइलें हासिल करने में मदद करें। इस समय यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बाकी सब हम स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को भी प्रभावशाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रणालियों की आवश्यकता है। तुर्की के अंकारा में मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में जापान सरकार ने नाटो और उसके 4 हिंद प्रशांत साझेदारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। इस बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रुते, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मंत्री, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रुते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई। मोतेगी ने कहा कि यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्रों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, जैसा कि उक्रेन में रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग से स्पष्ट होता है। कोइजुमी ने यह भी कहा कि अब कोई देश अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता और नाटो के साथ सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों ने रक्षा उद्योग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नाटो और 4 साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पश्चिमी जापान के नारा शहर में बुधवार को कई लोगों ने उस स्थल पर फूल अर्पित किए जहां 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो की चुनावी भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना 8 जुलाई 2022 को यामातो साइदाईजी स्टेशन के पास हुई थी। क्योतो शहर से आए करीब 60 साल के एक व्यक्ति ने स्मारक वेदी पर नमन किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे नेता थे और उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री से देश की रक्षा करने की प्रार्थना की। क्योतो के ही रहने वाले करीब 20 साल के एक युवक ने कहा कि 4 साल बहुत जल्दी बीत गए। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को पता चले कि एक राजनेता हिंसा के शिकार हुए थे। नारा क्षेत्रीय न्यायालय ने जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में 45 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस मुकदमे में सजा की गंभीरता और यामागामी के पालन पोषण को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसकी मां द्वारा यूनिफिकेशन चर्च नामक एक धार्मिक समूह को दी गई भारी दान राशि के कारण उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। अनुमान है कि दूसरे मुकदमे में भी ये एक अहम मुद्दा बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के निकट शुक्रवार से शनिवार के बीच एक विशाल और भीषण तूफान आने की आशंका है। इसे देखते हुए जापान के मौसम अधिकारियों ने वहां के लोगों से तैयारी करने का आग्रह किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि बुधवार सुबह 6 बजे तक समुद्री तूफान बावी फिलीपींस के पूर्व में समुद्र के ऊपर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था। आशंका है कि तूफान अपनी ताकत बरकरार रखते हुए ओकिनावा के साकीशिमा द्वीप समूह के करीब पहुंचेगा। शुक्रवार को साकीशिमा द्वीप समूह पर हवा के अंधड़ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। इतनी तेज आंधी मकान गिरा सकती है। इस क्षेत्र में ऊंची लहरें और समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ चेतावनी स्तर की भारी वर्षा और तूफानी लहरें भी देखने को मिल सकती हैं। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल चालित ट्रकों द्वारा लंबी दूरी तय करने से जुड़े परीक्षण की घोषणा की है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब लॉजिस्टिक्स कंपनियां पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में इस ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रक निर्माता इसुजु मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम डेवलपर T2 और ऊर्जा कंपनी इदेमित्सु कोसान इस परियोजना में शामिल हैं। परीक्षण इस वर्ष गर्मियों में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के बीच 500 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शुरू होंगे। कंपनियां ये पता लगाना चाहती हैं कि हल्के तेल की तुलना में बायोडीजल ट्रकों की ईंधन कुशलता और टिकाऊपन को कैसे प्रभावित करता है। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल खाना पकाने के इस्तेमाल शुदा वनस्पति तेल और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। उनका ये भी कहना है कि ये ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकता है। कंपनियां बायोडीजल की अपेक्षाकृत अधिक लागत कम करने के लिए इसका उपयोग बढ़ाने के तरीके तलाश रही है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: すみません。 手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。 いいですね。 これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
0: माफ कीजिए,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
0: दस्ताने चाहिए।
1: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: टेबुक्रो वा कोचिरा देस,
1: दस्ताने यहाँ हैं।
0: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
2: कोरे अत्तकसो,
0: ये गर्म लगते हैं।
1: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देस ने,
0: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देस का,
0: ये कितने के हैं?
1: दुकानदार ने बताया,
3: 1900 येन देस,
1: 1900 येन के।
0: फिर ताम ने पूछा,
2: कार्डो वा त्स्काएमास का,
0: कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: तो दुकानदार ने उत्तर दिया,
3: हाई त्स्काएमास,
1: जी कर सकते हैं।
0: सर्दियों में होक्काइडो का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये दस्ताने ताम के बहुत काम आएंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: टेबुक्रो गा होशीन देसु गा,
1: यानी दस्ताने चाहिए। ये वाक्य याद करके आप दुकानदार को बता सकेंगे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं।
0: इस वाक्य में
4: टेबुक्रो
0: का अर्थ है दस्ताने और
4: होशीन देसु गा
0: का मतलब है चाहिए।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आप चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
4: गा
1: और उसके बाद कहें
4: होशीन देसु गा, होशीन देसु गा।
0: बना है ई विशेषण
4: होशी
0: यानी चाहिए के बाद
4: देसु गा
0: जोड़कर
4: देसु गा
0: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
1: यहाँ तेबुक्रो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देस गा, इसलिए वाक्य बना तेबुक्रो गा होशीन देस गा, यानी दस्ताने चाहिए।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
4: होशीन देस गा, टेबुक्रो गा होशीन देसु गा।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
5: すみません。 होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा।
6: सो देसु ने। कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले महिला ने पूछा,
5: すみません, होक्काइडो नो ओमियागे गा होशीन देसु गा।
0: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।
4: अनो
1: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
4: ओमियागे
1: का अर्थ है उपहार।
0: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
6: सो देसु ने। कोनो ओकाशी वा इकागा देसु का?
1: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
0: इसमें
4: सो देसु ने
0: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
4: このお菓子
0: का मतलब है ये मिठाई।

0: मिठाई और
1: इकागा देसु का
0: अर्थ है कैसी रहेगी।
2: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: ओमियागे गा होशी इन देसु गा होक्काइडो नो ओमियागे गा होशी इन देसु गा すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
1: फुरोशिकी
0: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
3: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
1: कासा।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: すみません。傘が欲しいんですが。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: カードは使えますか？
1: カードは使えますか？
2: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: इसमें
1: カード
0: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
1: क्रेडिट कार्ड।
0: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
1: कोनो कार्डो वा त्सुकाएमासु का,
0: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: कार्डो वा त्सुकाएमासु का।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
6: ?1900 円です。
5: カードは使えますか？
6: はい、使えます。
2: अब सुनिए हारू जी की सलाह, जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
0: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
2: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
0: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे ATM भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में ATM होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
2: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। मगरबी जापान के नारा शहर में बुध के रोज बहुत से लोगों ने उस मकाम पर फूल रखे जहां साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो को 4 साल कबल इंतखाबी मुहिम की तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। फायरिंग का ये वाकया 8 जुलाई 2022 को यामातो साई दाईजी स्टेशन के करीब पेश आया था। क्योतो शहर से ताल्लुक रखने वाले 60 के बेटे के एक शख्स ने यादगारी चबूतरे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे रहनुमा थे और ये कि उन्होंने अनजानी वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि वो मुल्क का ख्याल रखें। क्योतो ही से ताल्लुक रखने वाले 20 के बेटे के एक शख्स ने कहा कि 4 साल तेजी से गुजर गए। उन्होंने मजीद कहा वो चाहते हैं कि अगली नस्ल ये जान ले कि एक सियासतदान को तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। जनवरी में नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 45 साल यामागामी तत्सुया को साबिक वजीर आजम को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वकलाए सफाई ने फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। मुकदमे की पहली समाअत में तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि सजा की शिद्दत और यामागामी के परवरिश को कितना वजन दिया जाना चाहिए। उसकी वालदा की जानिब से माजी में यूनिफिकेशन चर्च कहलाई जाने वाली मजहबी तंजीम को बड़े अतियात दिए जाने के बायस उसके खानदान को माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह मामला दूसरी समात में भी कलीदी नुक्ता रहने का इम्कान है। एक बड़ा और इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मुमकिन तौर पर जुमा से हफ्ता तक जनूब मगरबी जापान में ओकिनावा प्रीफेक्चर के करीब आ सकता है। जापान के मौसमियाती हुक्काम वहां के लोगों से अपील कर रहे हैं कि तूफान से महफूज रहने के लिए कबल अज वक्त तैयारियां कर ली जाएं। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि समंदरी तूफान बावी बुध की सुबह 6 बजे तक फिलिपाइन के मशरक में समंदर के ऊपर मगरब की जानिब बढ़ रहा था। इम्कान है कि यह ताकतवर तूफान अपना जोर बरकरार रखते हुए ओकिनावा में साकिशिमा जजायर के करीब आएगा। जुमा को साकिशिमा जजायर पर हवा के झकड़ों की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इस कदर तेज हवाएं बाज घरों को गिराने की सलाहियत रखती हैं। मस्कूरा इलाके में मौजों में तुगयानी और बुलंद लहरें देखने में आ सकती हैं और उनके साथ साथ इंतबाह की सतह की तूफानी शिद्दत और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल ईंधन से चलने वाले ट्रकों के लिए तवील फासले के सफर की आजमाइश के मनसूबों का ऐलान किया है। एक नाम ऐसे वक्त सामने आया है जब लॉजिस्टिक कंपनियां तेजी से इस ईंधन का बतौर मुतबादल माहौल दोस्त फ्यूल इंतखाब कर रही हैं। ट्रक बनाने वाली कंपनी इसुजू मोटर्स, खुद मुख्तार ड्राइविंग सिस्टम तैयार करने वाले फर्म T2 और तवानाई की कंपनी इदेमित्सु कोसान इस मनसूबे में शामिल हैं। आजमाइशी सफर इस मौसम गर्मा में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के दरमियान 500 किलोमीटर तवील रास्ते पर शुरू किए जाएंगे। कंपनियां इस बात का जायजा लेना चाहती हैं कि बायोडीजल का इस्तेमाल हल्के तेल के मुकाबले में ट्रकों की पायदारी और उनकी ईंधन की कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल इस्तेमाल शुदा नबाताती कुकिंग ऑयल और दीगर मवाद से तैयार किया जाता है। उनका मजीद कहना है कि यह ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के खराज को कम करने में मदद कर सकता है। कंपनियां अब बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ाने के तरीके तलाश कर रही हैं ताकि उसकी निस्बतन ज्यादा लागत को कम किया जा सके।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: 風呂敷が欲しいんですが。すみません、風呂敷が欲しいんですが。
1: あら、अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
2: कासा, कासा.
3: すみません、傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज का जुमला मकालमे में ताम ने दुकानदार को अदायगी के वक्त इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें.
4: कार्ड वा त्स्काएमास का?
1: कार्ड वा त्स्काएमास का, यानी क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है. यहाँ कादो दरअसल क्रेजित तो कादो यानी क्रेडिट कार्ड की मुख्तसर शक्ल है. आप अपने पास मौजूद क्रेडिट कार्ड दिखाकर यूं भी पूछ सकते हैं, कोनो कादो अत्स्काएमास का, यानी क्या ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है.
5: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए.
6: कादो अत्स्काएमास का?
7: कादो अत्स्काएमास का?
6: कादो अत्स्काएमास का?
5: जी सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए.
2: कादो अत्स्काएमास का?
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं. उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम उस चीज के बारे में बताती है जो वो खरीदना चाहती है.
4: すみません, 手袋が欲しいんですが。
8: 手袋はこちらです。
4: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
8: ?1900 円です。
4: カードは使えますか？
8: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
5: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान में क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल.
1: हिरा, आप खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं?
5: हाँ जी, अक्सर करती हूँ, क्योंकि इसे काफी आसानी रहती है. इसे जापान में अक्सर होटलों, रेस्टोरानों और स्टोरों में कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यकीनन ऑनलाइन शॉपिंग में भी. लेकिन बाज़ दुकानों में कार्ड इस्तेमाल ना किया जा सकने पर मुझे हैरत होती है.
1: वैसे तो जापान में अब क्रेडिट कार्ड और अदायगी के दीगर ज़राए का इस्तेमाल काफी आम है, लेकिन बाज़ जगहों पर, खुसूसन देही इलाकों वगैरह में, सिर्फ नकद रकम से अदायगी ही मुमकिन होती है.
5: गैर मुल्की सयाहों के लिए ये कोई खुश आइन सूरत हाल नहीं.
1: जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जापान में अब ऐसी दुकानों की तादाद बढ़ रही है जहां क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए, यानी नकदी के बगैर अदायगी मुमकिन है. बाज़ एटीएम मशीनों से क्रेडिट कार्ड के जरिए जापानी करेंसी येन में नकद रकम भी निकलवाई जा सकती है. डाकखानों या कन्वीनियंस स्टोर्स में एटीएम आम है, और अक्सर में बैरून मुल्क जारी करदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मुमकिन है.
5: वैसे कहीं जाने से पेशतर ये चेक कर लेना बेहतर होगा कि कहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं.
1: यकीनन, और बैरून मुल्क सफर की सूरत में कुछ नकद रकम तो लाजमन साथ रखनी ही चाहिए.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 8 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला कमानों से सुने समाचार। अमेरिका की केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने ईरान पर कई शक्तिशाली हमले किए हैं। उसका कहना है कि ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने दक्षिणी बंदरगाह शहर सिरिक में कई विस्फोटों की खबर दी। उसका कहना है कि केशन द्वीप पर भी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसने ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के विपरीत है। NHK से बात करते हुए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि यह समझौता ज्ञापन पूरी तरह से ईरान के रवैये पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जलडमरू मध्य में ईरान की हरकतें अस्वीकार्य हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन ईरान का कहना है कि समझौता ज्ञापन का उल्लंघन अमरीका कर रहा है। विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी का कहना है कि हमले और लाइसेंस रद्द करना समझौते के खिलाफ हैं। उन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। नाटो के नेता 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। बैठक से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने नेताओं का स्वागत किया और पहले दिन राजधानी अंकारा में प्रीति भोज का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में नाटो सहयोगी अमरीका का समर्थन करने में विफल रहे हैं। उक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उक्रेन और रूस समझौता करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बैठक से इतर आयोजित एक रक्षा मंच को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक ये संघर्ष जारी है, कृपया हमें और अधिक वायु रक्षा मिसाइलें हासिल करने में मदद करें। इस समय यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बाकी सब हम स्वयं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को भी प्रभावशाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रणालियों की आवश्यकता है। तुर्की के अंकारा में मंगलवार को नाटो शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में जापान सरकार ने नाटो और उसके 4 हिंद प्रशांत साझेदारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। इस बैठक में नाटो के महासचिव मार्क रुते, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मंत्री, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो सहित कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रुते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई। मोतेगी ने कहा कि यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्रों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, जैसा कि उक्रेन में रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग से स्पष्ट होता है। कोइजुमी ने यह भी कहा कि अब कोई देश अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकता और नाटो के साथ सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। प्रतिभागियों ने रक्षा उद्योग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नाटो और 4 साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: पश्चिमी जापान के नारा शहर में बुधवार को कई लोगों ने उस स्थल पर फूल अर्पित किए जहां 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो की चुनावी भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना 8 जुलाई 2022 को यामातो साइदाइजी स्टेशन के पास हुई थी। क्योतो शहर से आए करीब 60 साल के एक व्यक्ति ने स्मारक वेदी पर नमन किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे नेता थे और उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री से देश की रक्षा करने की प्रार्थना की। क्योतो के ही रहने वाले करीब 20 साल के एक युवक ने कहा कि 4 साल बहुत जल्दी बीत गए। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को पता चले कि एक राजनेता हिंसा के शिकार हुए थे। नारा क्षेत्रीय न्यायालय ने जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में 45 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस मुकदमे में सजा की गंभीरता और यामागामी के पालन पोषण को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसकी मां द्वारा यूनिफिकेशन चर्च नामक एक धार्मिक समूह को दी गई भारी दान राशि के कारण उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। अनुमान है कि दूसरे मुकदमे में भी ये एक अहम मुद्दा बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के निकट शुक्रवार से शनिवार के बीच एक विशाल और भीषण तूफान आने की आशंका है। इसे देखते हुए जापान के मौसम अधिकारियों ने वहां के लोगों से तैयारी करने का आग्रह किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि बुधवार सुबह 6 बजे तक समुद्री तूफान बावी फिलीपींस के पूर्व में समुद्र के ऊपर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था। आशंका है कि तूफान अपनी ताकत बरकरार रखते हुए ओकिनावा के साकीशिमा द्वीप समूह के करीब पहुंचेगा। शुक्रवार को साकीशिमा द्वीप समूह पर हवा के अंधड़ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। इतनी तेज आंधी मकान गिरा सकती है। इस क्षेत्र में ऊंची लहरें और समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ चेतावनी स्तर की भारी वर्षा और तूफानी लहरें भी देखने को मिल सकती हैं। 3 जापानी कंपनियों ने बायोडीजल चालित ट्रकों द्वारा लंबी दूरी तय करने से जुड़े परीक्षण की घोषणा की है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब लॉजिस्टिक्स कंपनियां पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में इस ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रक निर्माता इसुजु मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम डेवलपर T2 और ऊर्जा कंपनी इदेमित्सु कोसान इस परियोजना में शामिल हैं। परीक्षण इस वर्ष गर्मियों में कानागावा और ह्योगो प्रीफेक्चरों के बीच 500 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शुरू होंगे। कंपनियां ये पता लगाना चाहती हैं कि हल्के तेल की तुलना में बायोडीजल ट्रकों की ईंधन कुशलता और टिकाऊपन को कैसे प्रभावित करता है। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल खाना पकाने के इस्तेमाल शुदा वनस्पति तेल और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। उनका ये भी कहना है कि ये ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकता है। कंपनियां बायोडीजल की अपेक्षाकृत अधिक लागत कम करने के लिए इसका उपयोग बढ़ाने के तरीके तलाश रही है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 19वें पाठ में दुकानदार को ये बताना सीखेंगे कि आप क्या खरीदने आए हैं।
1: ताम वियतनाम से आई विदेशी छात्रा है और हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के ही दूसरे निवासियों मिया और काइतो के साथ उत्तरी जापान में होक्काइडो जाने वाली है। होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहां जाने की तैयारी करने के लिए ताम और मिया दस्ताने खरीद रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 19वें पाठ की बातचीत।
2: अनो सुमिमासेन तेबुकुरो गा होशीन देसु गा।
3: 手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
4: 1900円です。カードは使えますか？はい、使えます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले ताम ने दुकानदार से कहा,
2: あの、 すみません。
1: माफ कीजिए,
2: तेबुकुरो गा होशीन देसु गा,
1: दस्ताने चाहिए।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: तेबुकुरो वा कोचिरा देसु,
0: दस्ताने यहाँ हैं।
1: फिर मिया ने दस्तानों की एक जोड़ी दिखाते हुए कहा,
3: कोरे अत्तकासो,
1: ये गर्म लगते हैं।
0: ताम ने दस्ताने पहन कर देखे,
2: ई देसु ने,
1: अच्छे हैं।
2: कोरे इकुरा देसु का,
1: ये कितने के हैं?
0: दुकानदार ने बताया,

0: चाहते हो कि दुकानदार आपको वो चीज दिखाए, तो उस चीज के नाम के बाद लगाएं कारक
1: गा
0: और उसके बाद कहें
1: होशी इन देसगा।
2: बना है ई विशेषण
1: होशी
2: यानी चाहिए के बाद
1: देसगा
2: जोड़कर
1: देसगा
2: का उपयोग अपनी बात समझाने और सुनने वाले से मदद का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
0: यहाँ ते बुकरो यानी दस्ताने के बाद आया है गा और उसके बाद होशीन देसगा, इसलिए वाक्य बना ते बुकरो गा होशीन देसगा यानी दस्ताने चाहिए।
2: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंतिम शब्द का सुर नीचे रखना है।
1: होशीन देसगा टेबुकरो गा होशीन देसगा।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला कुछ खरीदना चाहती है।
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने पूछा
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: माफ कीजिए, होक्काइडो का उपहार चाहिए।
0: का भाव है और इसका उपयोग किसी को आवाज लगाने के लिए किया जा सकता है।
1: ओमियागे
0: का अर्थ है उपहार।
2: अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि परिजनों या मित्रों के लिए जापान से क्या उपहार लेकर जाएं, तो आप दुकानदार से ये सवाल पूछकर उनकी सलाह ले सकते हैं। तो अब सुनते हैं कि जवाब में दुकानदार ने क्या कहा।
4: सो देसुने, कोनो ओकाशी वा इकागा देसुका।
0: अच्छा, ये मिठाई कैसी रहेगी?
2: इसमें
1: सो देसुने
2: का अर्थ है अच्छा। इसका इस्तेमाल जवाब सोचते समय किया जाता है।
1: कोनो ओकाशी
2: का मतलब है ये मिठाई और
1: इकागा देसुका
2: का अर्थ है कैसी रहेगी।
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: ओमियागे गा होशी इन देसु गा।北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सामान बांधने का पारंपरिक जापानी कपड़ा यानी
1: फुरोशिकी
2: खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार को ये कैसे बताएंगे?
5: すみません, फुरोशिकी गा होशी इन देसु गा।
0: अब मान लीजिए कि आप शहर में टहल रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी। आप एक कन्वीनियंस स्टोर में चले गए और दुकानदार से ये कहना चाहते हैं कि आपको छाता चाहिए। छाते को जापानी भाषा में कहते हैं
1: कासा।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: すみません, कासा गा होशी इन देसु गा।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: कार्ड वा त्साएमास्का?
1: कार्ड वा त्साएमास्का
0: का अर्थ है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: इसमें
1: कार्ड
2: का मतलब है क्रेडिट कार्ड। पूरे शब्द का उच्चारण है
1: क्रेडिट कार्ड।
2: आप अपना कार्ड दिखाते हुए ये भी कह सकते हैं
1: कोनो कार्ड वा त्साएमास्का
2: यानी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: कार्ड वा त्साएमास्का।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。

0: これ、あったかそう。
1: いいですね。これ、いくらですか？
2: 1900円です。
1: カードは使えますか？
2: はい、使えます。
3: ハルさんの知恵袋。
4: अब सुनिए हारू जी की सलाह जिसमें हम आज बात करेंगे जापान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग की।
5: जापान में आप होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और ऑनलाइन खरीदारी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें ऐसी भी हैं जहां इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता।
4: हालांकि इन दिनों क्रेडिट कार्ड और कैशलेस यानी नकद रहित भुगतान करने के तरीके आम होते जा रहे हैं, मगर कम आबादी वाले क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी दुकानें और अन्य सुविधाएं केवल नकदी ही लेती हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
5: वैसे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाली दुकानों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे एटीएम भी हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जापानी येन निकाल सकते हैं। आमतौर पर डाकघरों और कन्वीनियंस स्टोरों में एटीएम होते हैं और उनमें विदेशी कार्ड भी चलते हैं।
4: फिर भी जापान में घूमते समय नकदी साथ रखना अच्छा है। ये जानकारी भी पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं।
5: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ होक्काइडो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। मगरबी जापान के नारा शहर में बुध के रोज बहुत से लोगों ने उस मकाम पर फूल रखे जहां साबिक जापानी वजीर आजम आबे शिंजो को 4 साल कबल इंतखाबी मुहिम की तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। फायरिंग का ये वाकया 8 जुलाई 2022 को यामातो साई दाईजी स्टेशन के करीब पेश आया था। क्योतो शहर से ताल्लुक रखने वाले 60 के बेटे के एक शख्स ने यादगारी चबूतरे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आबे जापान के लिए एक अच्छे रहनुमा थे और ये कि उन्होंने अनजानी वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि वो मुल्क का ख्याल रखें। क्योतो ही से ताल्लुक रखने वाले 20 के बेटे के एक शख्स ने कहा कि 4 साल तेजी से गुजर गए। उन्होंने मजीद कहा वो चाहते हैं कि अगली नस्ल ये जान ले कि एक सियासतदान को तशद्दुद के जरिए कत्ल किया गया। जनवरी में नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 45 साल यामागामी तत्सुया को साबिक वजीर आजम को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वकलाए सफाई ने फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। मुकदमे की पहली समाअत में तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि सजा की शिद्दत और यामागामी के परवरिश को कितना वजन दिया जाना चाहिए। उसकी वालदा की जानिब से माजी में यूनिफिकेशन चर्च कहलाए जाने वाली मजहबी तंजीम को बड़े अतियात दिए जाने के बायस उसके खानदान को माली तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मामला दूसरी समात में भी कलीदी नुक्ता रहने का इम्कान है। एक बड़ा और इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मुमकिन तौर पर जुमा से हफ्ता तक जनूब मगरबी जापान में ओकिनावा प्रीफेक्चर के करीब आ सकता है। जापान के मौसमियाती हुक्काम वहां के लोगों से अपील कर रहे हैं कि तूफान से महफूज रहने के लिए कबल अज़ वक्त तैयारियां कर ली जाएं। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि समंदरी तूफान बावी बुध की सुबह 6 बजे तक फिलिपाइन के मशरिक में समंदर के ऊपर मगरिब की जानिब बढ़ रहा था। इम्कान है कि यह ताकतवर तूफान अपना जोर बरकरार रखते हुए ओकिनावा में साकिशिमा जजायर के करीब आएगा। जुमा को साकिशिमा जजायर पर हवा के झकड़ों की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इस कदर तेज हवाएं बाज घरों को गिराने की सलाहियत रखती हैं। मस्कूरा इलाके में मौजों में तुगयानी और बुलंद लहरें देखने में आ सकती हैं और उनके साथ साथ इंतबाह की सतह की तूफानी शिद्दत और मूसलाधार बारिश हो सकती है। 3 जापानी कंपनियों ने बायो डीजल ईंधन से चलने वाले ट्रकों के लिए तवील फासले के सफर की आजमाइश के मनसूबों का ऐलान किया है। एक नाम ऐसे वक्त सामने आया है जब लॉजिस्टिक कंपनियां तेजी से इस ईंधन का बतौर मुतबादल माहौल दोस्त फ्यूल इंतखाब कर रही हैं। ट्रक बनाने वाली कंपनी इसुजु मोटर्स, खुद मुख्तार ड्राइविंग सिस्टम तैयार करने वाली फर्म T2 और तवानाई की कंपनी इदेमित्सु कोसान इस मनसूबे में शामिल हैं। आजमाइशी सफर इस मौसम गर्मा में कानागावा और हियोगो प्रीफेक्चरों के दरमियान 500 किलोमीटर तवील रास्ते पर शुरू किए जाएंगे। कंपनियां इस बात का जायजा लेना चाहती हैं कि बायोडीजल का इस्तेमाल हल्के तेल के मुकाबले में ट्रकों की पायदारी और उनकी ईंधन की कारकर्दगी पर किस तरह असरअंदाज होगा। कंपनियों का कहना है कि उनका बायोडीजल इस्तेमाल शुदा नबाताती कुकिंग ऑयल और दीगर मवाद से तैयार किया जाता है। उनका मजीद कहना है कि यह ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के खराज को कम करने में मदद कर सकता है। कंपनियां अब बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ाने के तरीके तलाश कर रही हैं ताकि उसकी निस्बतन ज्यादा लागत को कम किया जा सके।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: 手袋が欲しいんですが。
1: अगर आप इस अंदाज को याद कर लें तो इसे कोई भी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तेबुकुरो यानी दस्ताने और होशीन देसगा के मायने है चाहिए। अब आज का नुक्ता। जब आप कोई चीज खरीदने जाएं और चाहते हैं कि दुकानदार वो चीज दिखाए तो उस चीज के नाम के बाद गा और उसके बाद होशीन देसगा लगाएं। होशीन देसगा ये इसमें सिफत होशी यानी चाहिए के बाद देसगा लगाकर बनाया गया है। देसगा अपनी बात की वजाहत के साथ साथ इस बात का इशारा है कि आप मुखातिब से किसी जवाब की तवक्को रखते हैं।
1: तो मकालमे की सूरत हाल में थेबुकरो यानी दस्तानों के बाद गा और फिर होशीन देसगा यानी चाहिए लगा कर बनाया गया है। थेबुकरो गा होशीन देसगा यानी एक तरह से ताम दुकानदार से कह रही है कि मुझे दस्ताने दिखाएं। ऐसा ही है ना?
2: जी बिल्कुल ऐसा ही है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। जुमले के आखिर में लहजा धीमा कर लेना बेहतर तासुर देगा। जी सामईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: और अब एक दुकान में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान होने वाला मकालमा सुनिए।
3: すみません北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: वो माफ कीजिएगा, मुझे होकाइडो की सौगात चाहिए।
2: ये किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। ओमियागे के मायने है किसी इलाके की सौगात। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सफर के मकाम से क्या तोहफा ले जाएं, तो दुकानदार से ये जुमला कहना बेहतर होगा।
4: सो देस ने, कोनो ओकाशी वा इकागा देस का?
1: अच्छा, इस मिठाई के बारे में क्या ख्याल है?
2: सो देस ने, ये अक्सर कोई मुनासिब जवाब सोचने के दौरान कहा जाता है। कोनो ओकाशी यानी ये मिठाई और इकागा देस का किसी चीज की सिफारिश के लिए कहा जाता है, यानी ये चीज कैसी रहेगी या इस चीज के बारे में क्या ख्याल है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: お土産が欲しいんですが、北海道のお土産が欲しいんですが、すみません、北海道のお土産が欲しいんですが。
1: उम्मीद है आपने अच्छी तरह मश्क कर ली होगी।
2: अब इसी अंदाज की कुछ और मश्कें। फर्ज करें आप गठरी बांधने वाला रिवायती जापानी रुमाल खरीदना चाहते हैं, तो दुकानदार से ये बात किस तरह कहेंगे? जापान के उस रिवायती बड़े रुमाल को कहते हैं
5: फुरोशिकी। फुरोशिकी।
6: अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा। अनो सुमिमासेन, फुरोशिकी गा होशीन देसु गा।
2: और अगर आपको छतरी चाहिए तो दुकानदार से कैसे कहेंगे? छतरी की जापानी है
5: कासा। कासा।
7: すみません。傘が欲しいんですが。すみません。傘が欲しいんですが。
2: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मकालमे में ताम ने दुकानदार को अदायगी के वक्त इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लें।
8: कार्डो वा त्स्काएमास का?
2: कार्डो वा त्स्काएमास का यानी क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ कादो दरअसल कुरेजित्तो कादो यानी क्रेडिट कार्ड की मुख्तसर शक्ल है। आप अपने पास मौजूद क्रेडिट कार्ड दिखाकर यूं भी पूछ सकते हैं कोनो कादो अत्स्काएमास का, यानी क्या ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
9: कादो अत्स्काएमास का?
10: कादो अत्स्काएमास का?
11: कादो अत्स्काएमास का?
1: जी सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
5: कार्डो वा त्स्काएमास का?
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम उस चीज के बारे में बताती है जो वो खरीदना चाहती है।
8: すみません手袋が欲しいんですが。
12: 手袋はこちらです。
8: これ、あったかそう。いいですね。 これいくらですか？
12: 1900円です。
8: カードは使えますか？
12: はい、使えます。
13: ハルさんの知恵袋。
1: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान में क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल।
2: हीरा, आप खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं?
1: हाँ जी, अक्सर करती हूँ, क्योंकि इसे काफी आसानी रहती है। इसे जापान में अक्सर होटलों, रेस्टोरेंटों और स्टोरों में कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यकीनन ऑनलाइन शॉपिंग में भी। लेकिन बाज़ दुकानों में कार्ड इस्तेमाल ना किया जा सकने पर मुझे हैरत होती है।
2: वैसे तो जापान में अब क्रेडिट कार्ड और अदायगी के दीगर ज़राए का इस्तेमाल काफी आम है, लेकिन बाज़ जगहों पर, खुसूसन देही इलाकों वगैरह में, सिर्फ नकद रकम से अदायगी ही मुमकिन होती है।
1: गैर मुल्की सयाहों के लिए ये कोई खुश आइन सूरत हाल नहीं।
2: जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जापान में अब ऐसी दुकानों की तादाद बढ़ रही है जहां क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए, यानी नकदी के बगैर अदायगी मुमकिन है। बाज़ ATM मशीनों से क्रेडिट कार्ड के जरिए जापानी करेंसी येन में नकद रकम भी निकलवाई जा सकती है। डाकखानों या कन्वीनियंस स्टोर्स में ATM आम है, और अक्सर में बैरून मुल्क जारी करदा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना मुमकिन है।
1: वैसे कहीं जाने से पेशतर ये चेक कर लेना बेहतर होगा कि कहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं।
2: यकीनन, और बैरून मुल्क सफर की सूरत में कुछ नकद रकम तो लाजमन साथ रखनी ही चाहिए।